राग रतन पर वार पर या शब्द गावण आया शब्दो तगावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा।

संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे बिनवंत नानक।

कर सुग्रु भेजस्ताम न हो तू करता करना मैं ना ही जाहूं करी न हो बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ जा।

रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुरु गुरहाई कहन जाई तेरी तिल वडियाई सब सत सब तप सब चंगे आईया सिद्धा पुरखा किया वडे आईया तुद बिन सिद्धी किरण न पाइया कर मिलै नाही ठाकुर हाइया आखण वाला क्या बेचारा

हम देखा तह डूबिय रे। मन एक न चित स मूड़ मनाओ, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ।

लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छ करता। श्री अस्तोज जप हे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पा बैसोई, दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल। सुनै गुंग जो जाहे सो रसना पावई, सुनै मूड चित लाए चतर ताय आवई। दुख दर्द पाओ निकट नाउ, तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार। चाओ पाई को कह चाओ पाई, संबत सत्रह सहसपुण जय, अर्ध सहसपुण तीन कह जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रब बारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्र पख्याने, तिर त्रित्रय मंत्री भूप संवादे। चार सौ पांचत्र समापत, मस्त शुभ मस्त आप जू दोहरा। दास जान कर दास पर की जा कृपा अपार, आप हर दर राख मोहे मन क्रम बचन बिचारो। चाओ पई मैं ना ग्रेसा प्रथम नाऊं, केशन बेशन कब हूं न त्याऊं। कान सुने पहचान न तिन सौ, लिव लागी मोडी पग इन सौ। माह कार रखवार हमारो, माह लो मैं किं कर थारो। अपना जान करो रखवारो, बह गह की लाज बिचार। अपना जान मुझाए प्रत परियाए, चुन चुन सतर हमारे मरियाए।

मोहे हर परमय आनंद वर तोहे अपना जानू करो प्रत पारा तुम साहि मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारू हमरे सब बैरियों संघारू प्रथम तरूं भगवत को ध्यानाऊं बहुर करूं कबता बिद नाना कृष्ण जथा मत त्रित्रो चारो चूक होई कबल्यो सुधारो कबियो बाचो दोहरा जो नित प्रभु सो कह हूँ जग माहि जो तेह प्रभु को त्याई है अंत सर को जाहि दोहरा हर हर जन दोई एक है बे विचार कछ नाहि जल ते उपतरंग जाऊं जल ही बिखै समाज दोहरा जब आए सु प्रभ को पयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा सुन छिपते सब हूँ कथ सुनाई का बात दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लहंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा कालपुर की देह मो कोटक बिसन महेश कोटिंदर ब्रह्मा कितै राक्षस करोर जलेस दोहरा

एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहै हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी करो मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा

पुरका पयो। इसका सब साधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका हो उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रखुर तारो। तम संसार

जिस पास बैठे हैं सभी हमारे सदमागार वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे हर मन वसै तिथै पाओ कदे न होए भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे हर मन वसै तिथै पाओ कदे न होए दुश्मन दुख तिसनु नेड़ न आवे

क्या तद है बंद है निर्बूध है सूद है कार है जार है लाह है जाह है नंत है महंत है अली कैन नर्सरी कैन लंब है संभ है अगम है अजम है अपूत है सूत है अलोक है शोक है कर्म है परम है अजीत है पीत है अबाह है गाह है अमान है नदान है अनेक है फरेक है कुजंग पर्याप्त छंद है नमो सर्वमान्य समस्त निदाने नमो देव देवे पेखे पेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगावणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नसंगी माते नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तन ताने नमो नृत नृत्य नमो नाथ नादे नमो भान भाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति सूपे प्रभंगी प्रमाते समस्ति बिभूते कलंक बिना ने कलंकी सुपे नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लुकमाता अपेखी अपरमी अभोगी भुगते नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणी क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवी सुतनमे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो भू भूपे नमो दान दाने नमो मान मान्य नमो रोग रोगे नमस्तंग इशनानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वंग परणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृतकर्ता आदो अर्ध अर्धंग अगंग ओघर्ता परम परम परमेश्वरंग पुरुषपालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग छेदी अभेदी नामंग कामंग समस्तोपराधी समस्तस्तामंग तेरा जोर चात्री छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पे सैं भुजंग प्रयात छंद है अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो साह साहे नमो बाह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृशंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीबीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालंग स्वरूपे कुकर्म परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चर्पण छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखर जोगी अचल भोगी अचल राजे अटल साजे अखर तरमंग अला कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजौन पुरख पार सर्व मान तिरमान देव भेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर तत्र ब्रज ही अवधूत रूप लसाल नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेख आद पुरख दार मूर्ता जौन आद असेख देश और न पे जाक रूप रेख न राग जतर तत्र दिशा विशा हो फाल अनुराग नाम काम विहीन पेखत धम न जाये सर्व मान सर्वतन मान सदा मन ताहे एक मूर्त नेक दर्शन की रूपा नेक खेल खेल खेल खेल अंत को फिर एक दे पे न जानही जे बेत और कुतेव रूप रंग न जात पासो जान कह जेब तात मात न जात जाकर जन ब्रण बहीन चक्र बकर फिराये चतर चक मान ही पुरतीन लोग चावद के बिखा जग जाप जह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सबह जि थाप परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सर्व च्यो श्री अम पफ गरण भंजन हार कालहीन कल असंयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सु परमरथ भूत लख पेस अंग रंग रंग जाक जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दा काम आप रूप अमीक अनुसते पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन।

यादरूप सूत अंगहीन पंगनात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व त्यन भेक सर्व शास्त्र न जानहीं जेह रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाकह नित भक्त नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवै वह चित्त मद पार छंद तप्रसाद गुण गानुदारु महिमा पर आसन भंग पानंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजन बाहु साहु साहु राजन राज पहानन पहान देवन देव महान इंद्रान इंद्र बालन बालु रंकर रंक कालन कालन पूते अंग बपांग गत मित पारु गुण गानु दार मन गण प्रणाम निरपय निकाम आतदत प्रचंड मित गत अखंड अरिसह कर्म अदृशा त्रम सर्वा प्रणाड्यन डन बाड्यन चाचरी छंद प्रसाद गोबिंदे मकंदे अवदारी पारी हरियंकरी नामी कामी भुजंग प्रयात छंद चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र धान्या चाचरी छंद न सत्रै न मित्रै न परमंग न पित्रै न कर्मंग न काय जन्म अजाय न चित्रै न मित्रै पर्याय पवित्रै प्रतिसै अदिसै अदृशै अकृषाय भगवती छंद त प्रसाद कस्ते के अछज देसाय के अभिज पेसा के अगंज कर्म के अपंज भरम के अभिज लोक के अदत सुख के अभदूत वर्ण के विभूत करण के राजन प्रभ के त्रमंग तुझाय के सुख वर्ण के सभा भरण के जगतं कृतियां के छतरंग छत्रियां के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुपह अनुप के आद अधेव के आप अपेव के चतरंग बिहीन के एक अधीन के रोजी रजा कर रही मरिया के कपाक बया बे के गैबल गैबे के अपल गुना है के साहन साह के कारण कुणिंद है के रोजी दहांद है के राज कर रही मैं के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौनाई के सर्वत्र पौनय के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीनाई के सर्वत्र लीनाई के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख के सर्वत्र पुखाय के सर्वत्र त्राणाय के सर्वत्र प्राणाय के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पिसाय के सर्वत्र मान्य सदा प्रधान्याय के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र पान्याय के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वं कलिमय के परम अफीमय के आकल अलामय के साहब कलामय के उसनर वजू है तमाम हमेशा सलामय सलीखत मदामय गनी मुल सकस्त गरी मुल प्रस्थ बिलंदर मकान जमीन जमान तमी जल तमाम रुजल निधान हरि फुल जी मैं अजायक जकीन अनेकुल तंग अनेकुल तरंग है भेद है भग है अजी जल नवाज गनी मुल खराज निरुक्त स्वरूप है त्रिमुगत विभूत है पर भुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुप है समस्त उपराज सदा सब साज है समस्त सलाम सदैव काम है निर्बाध स्वरूप अगाध है अनूप है ओ अंग आदि रूप नास रूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिगामी त्रिवर्ग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग त्रिभागे सुसर्ब अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है छेद है छूत है के नरकुं प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है चाचरी छंद है अपंग है अनंग है भेख है लेख है भरम है कर्म है नाद जुगाद है अजय है बह है भूत्या तूत्या नास है दास है धंद है बंद है भगत है बरक्त है अनासे प्रकाशे न चिंत्य सुनते अलिख्य देख लेख भेख ढा है गा है सम है गम है नील है नाद है अनित है सुनित है
अजात है जात है इंचर प्रछंद प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणु सर्वंग त्राणु सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रशावल छंद त प्रसाद नमो नरक नासे सदा प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्रन पुत्रन सत्रन मित्रन तातन मातन जातन पाता इन साकं त्रिका मित्तोमी कस्दव प्रभय अजह अजह भगवती छंद त प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेश्वर सलामे समस्त कलामे के साहब दिमागे के हुसन चरागे के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दिहंद है के राज कर हिंद है करीमल कमाल है के हुसन उल जमाल है गरीमल खराज है गरीबल नवाज है हरी फुरस कन है हरासर फेकन है कलंक प्रणास है समस्त निवास है अगंजल गनीम है रजाय कर रहीम है समस्त जुबा है के साहब करा है के नरकु प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्वल गवान है हमेशर रवान है तमा मूर्त जी मैं समस्त जीज है परम परमी सह समस्त दिस है देसल लेख है मेसल भेख है जमिन जमाह है अमिकुल माह है करिमल कमाल है के जोरत जमाल है कचलंग प्रकाश है के मित्र सुबास है के अजब स्वरूप है के मित्तो विभूत है के मित्तो प्रसाह के आत्म प्रभ है के अचलंग अनंग है के मित्तो भंग है मध पार छंद ता प्रसाद मोन मन प्रणाम गुण गर्म दाम अर बर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मन सलाम हर नर खन बर नर मंड हर पहनास मोन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल तल मदाम अनछिज अंग आसन भंग उपमा पार गात्म उदारू उपमा पार गात्म उदारू जल तल महंत जल थल मंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अन पहुनास त्रित तरतरास आजन बाह एक सदाह ओंकाराद कतनिया नाद खल खंड ख्याल गोरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरनाम अनचिज गात अजन बात अनचन गात अरणज बात अन टुट भंडार अन टट पार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त प्रसाद करणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व अबारण है त्रित के धरन है जग के करण है मन माने है जग जन सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास है सर्वनाश है

जप है तप तप है, अकृत कृत अमृत अमृत है, अमृत अमृत कर्ण कृत कृत कृत तरणी त्रितम तेसर है परमेश्वर है, अकृत कृत अमृत अमृत अजवाकृत अमृत अमृत नर नायक है, खलकायक है, विश्वम्बर है, करुणालय है, नृप नायक है, सृपायक है, पावपंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म सर्वात्म आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारी नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग संत रूपे नमो परम तत्ंग अतत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जद जदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं पे पूते कलंकर अरूपे अलंकर लंके नमो आशा से नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी छंद

मुखते निमख बुलाय, जाप ताप भगत सपुरी, जो प्रभु कै मन पाई, नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अगाई, नासरी माला पंजवा। जिन कीने वस अपने त्रैगुण पवन चतुर संसारा, कोट स्नान ताप तान खंडे क्या जंत विचारा, प्रभ की ओट गए तो छुटो, साध प्रसाद हर हर हर गाए, बिकै ब्याज तब हुटो राव। ऐ सुनिए न मुक्त बकिया न मोह उडिठी, ऐसी ठगौरी पाए पुलावे, मन सब कै लागी मिठी। माए बाप पूत हित प्राता, उन कर कर मिलो दुआ, किसी बाद काट किसी पै, सगले लर लर मुगा। हम बलारी सतगुरे अपने जिन्हें चलत दिखाया, गुजी पाए चले संसार भगत न व्यापै माया, संत प्रसाद मां सुख पाया, सगले बंधन काटे, हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर लै आया खाटी, रासी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक कसम हमारे,

कवन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लइए राउ। खोट फराद हमारे खंडो, अनक विधि समझावो। हमें अज्ञान अलप मत थोरी, तुम्हें अपन बिरद रखाओ।

पूजा वर्त तिलक स्नाना पुन दान भव दैन कहू न पीजै संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जपत मन चैन भव प्रकार खोजै सब ताको बिकम न जाई लैन राओ जापता ब्राह्मण बसदा कर उर्थ ताप लै गैन ए बिदनै पत्यानो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस कृपैन सत्संग रंग प्रभेटे नानक सुख जन रैन रासी महला पंजवा बंधन ते छुटकावै प्रभु मिलावै हर हर नाम सुनावै अस्त्र करे निचले मनुआ बौरना कतू तावै है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो हियो दियो अर्पो अपना चीत राव पर तन पर की निंदा इनसो प्रीतन लागे संत संग संत संपाखण हर कीर्तन मन जागे गुण दान दयाल पुरख प्रभ सर्व सुख

हर के दास के चित बह बुरे आई, इसी को फिर मारा जन का आपस आई हुआ। निंदक भागे हार प्रमत प्रमत उहा, बहुड़ ना ग्रह बहुड़ ग्रह न मंजार, नानक शरण परयो दुख भंजन गुण गावे सदा अपार। निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया का दरबार, रासरी महला पंजमा अब हर राखन हार चितारिया, पतत पुनीत किए ये किन पितर सगला रोग विदारिया। राव गोस पैसा कह संग काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूर्ण नारायण संगी सगले तारिया। औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभु तारिया, चन रेण बाँचद नित नानक पुनः पुनः बलहारिया। रासरी महला पंजवा मेरा लागो राम सिंह वेत सतगुर मेरा सदा साई, जिन दुखा काटिया खेत राव हाथ दे रख अपना कर बिरता सगल मिटाई। निंदक के मुकाले कीने जन का आप सहाय, साचा साहेब हुआ रखवाला राख लिए कंठ लाए। निरपो पे सदा सुख माने नानक हर गुण गाए, तनासरी महला पंजवा औके तेरो नाम दयाल, मोहे आतर तेरी गत नहीं जानी तू आप करह प्रतपाल। राव तारण ग्रह स्वामी मेरे द्वितीया भाव निवार, बंधन काट लो अपने कर कबन आवार। तेरी शरण प्याओ जीवा तू सम्राट पुरख मेहरबान, आठ पैर प्रभु को आरा दी नानक सत गुरबान। राग तनासरी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हा हा प्रभ राख ले ओ, हम ते किछु ना होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देव राव। अगन कुटुंब सागर संसार भरम हो ज्ञान अंधार, ऊच नीच सुख दुख त्रापस नाए तृष्णा भूख, मन वासना रच बिकै व्याध पंच दूत संगमा साध। जी जान प्राण धन तेरा नानक जान सदा हरने।

मूर्त जाकी निर्मल से एक निरंजन जाकी रास मिल साध संगत होवे प्रगा होवत प्रगास जीवन का दाता पूर्ण सब टाए कोट क्लेश मिटारनाय जनम मरण सगला दुख नासा गुरमुख जाके मन तन वासा जिसनु आप ले लड़ लाए दरगह मिलत सहे जाए सही भगत जे सच भाणे जम का से पै निकाणी साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन का है विचार कट कट अंतर सगले आधार नानक जाचा संत रे नार त्रासी महला पंजवा इक ओंकार सतगुर प्रसाद घर बार तेरा परवासा तू जन कह संग कर कृपा प्रीतम प्रभु नाम जपवा रंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करा करा वह स्वामी सा मसल प्रभान राव पद परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साके चरण सर नानक दास हर हर संति एवं जाति त्रासी महला पंजवा सगल मंडोत प्रभते पाए कंठ लाए गुरु राके संसार सागर में जल न दीने किन दुत्र पाके जिन का मन साचा विश्वास फेक फेक स्वामी की सोभानंद सराव उलास राव चरण सरण पूर्ण परमेश्वर अंतर जामी साक जान बुझ अपना कियो नानक भगतन काया कर रख त्रासी महला पंजवा जय जय पेखो तै हजूर दूर कतो न जाई रव रहा सर्वत्र मैं मन सदा त्याई ये तूत नहीं बिछड़ सो संगी गणिया बिन से जाय जो निमुख मैं सो लभ सुख बणिया राहो प्रत पालाया प्याओ दे कछु न होई सा सा संभालता मेरा प्रभु सोई अछल अछेद अपार प्रभु चा जाका रूप जप जप कर आनंद जन अचर्ज अनूप सामत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा नानक मंगा दान प्रभ रेन पग साधा रासरी महला पंजवा जिन तुम भेजे तिना बुलाए सुख सह सिद्धि करो आनंद मंगल गुण गाओ सह तुम निचल राज कुमाओ तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दुख यार आप निवारे आपदा भेज बतीत राओ प्रकट कीने प्रभ करने हारे नासन भाजन ताके घर मंगल बाजे नित बाजे अपने खसम निभाजे आस्तर रहो डोलो मत कबहू गुर कै बचन आधार जय जयकार सगल भू मंडल मुख उजल दरबार जिनके जी तिन्हें ही फेरे आपे भया सहाई आचर्ज किया करना हारै नानक सच वड्याई त्रासरी महला पंजवा कर छेवा इक ओंकार सतगुर प्रसाद सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो हर बिन मुक्त न काहू जियो राव मन निर्मल कर्म कर तारन तरन हर अवर जंजाल तेरा काहू ना काम जियो जीवन देवा पारवन सेवा उपदेश मोको गुरदी न जियो इस ना लाई आई तो जाको किछ नाही बीत अंत की बार उस संग न चाल मन तन तू आराध हर के प्रीतम साथ जाका संग तेरे बंधन छुटे गहो पारुन सर निर्दय कमल चरण अवर आस कछपटल न की जाए सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जाको कृपा की जाए त्रासरी महला पंजवा मेरे लाल भलो रे भलो हर मंगना देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन प्राण पत चित राख सगला मरना राव चंदन चोहा रस भोग करत अनेक बिख्या विकार देख सगला पीके एक गोविंद को नाम निको कहते साध जन तन धन आपन तप्यो अर जापना निमक जाप्यो अर्थ द्रब देख कछ संग नाई चलना जाको रे करम पला तिन उठ गए संत पला तिन नाई रे जम संतावै साधु की संग ना पायो रे परम निधान मिटो है अभिमान एक निरंकार नानक मन लगना रासरी महला पंजवा कर सतमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर प्यारे कल कलेश लोभ मोह महापाव जल तारे राओ सास सास निमक निमक दिन सरैन चितारे साध संग जापनी संग मन निधान तारे चरण कमल नमस्कार
ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਚਾਰੇ।

0: राव समझना परे विकार सरचो जा सर को विसरायो संग स्वामी सो जानो नान भान कोजन कोता आयो रतन राम काटी के पितर ताको ज्ञान पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरता जन्म गवायो जस महला नौमा हर जू राख लियो पत मेरी जम को त्रास पायो रे अंतर शरण गए कृपा ने तेरी राव महापत मुग्ध लोभी पुन करत पाप अभारा पह मरबे को विसरत नान तै चिंता तन जारा किए उपाप मुक्त के कारण दय दुष्कोटता आया काटी पीतर बसा निरंजन ताको मर न पाया नाहन गुण नाहन काछ जाप तप कौन कर्म अब की जा नान घर पर शरणागत अपह दान प्रभदी जय जय श्री महला नौमा मन रे साचा गहो विचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो वे संसारा राव जाको जोगी खोज तारे पायो नाहे तै पारा सो स्वामी तुम निकट पछाणो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत मैं हर को कबहु नाहि संभारा नानक चरण परयो जग बंधन राखो बिरध तुम्हारा जय श्री महला पंजवा शांत घर पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक दर्शन प्यासे दिन सरात चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे जंतिया तिस दस प्यारे सिर धरि उतारे भोरी दर्शन दी जय नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल पीना तिरी जय प्रभ सिंह मन लीना ज्यो जल मीना चातरक जिवै तिसंतिया जन नानक गुरपुरा पाया सगली तिका बुझंतिया यार वे प्रिय हबे सखियां मुँह कही ना जहिया यार वे एक डू एक चाड़ै औके सचतेहिया एक दू एक चाड़े अनक प्यारे यत कर दे भोग विलासा तिना देख मन चौ उठंदा औकाद पाए गुणतासा जिन्नी मैं डाल मन डेहिया नानक हुण बिनो सुहागण मुँह दस डिका फिर कही यार अपन भाणा किछ नीसी छंदा आप गवाया जतन भाग मताने बाह पकड़ ठाक रहो की गुण अवगुण ना पछाने गुण आरतें पाए रंग लाल बना अबो किस सुहंदा तन सुहागण साई जिस संग पतार वसन यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई वर लोरिंदा आया वजी वादाई महामंगल व्यस्थिया फिर दयाल साध नवरंगिया बड़ भाग पाया गुरमिला आया साध कै सत्संगिया आसा मनसा सगल पूरी प्रिय अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई
1: जय श्री महला पंजवा घर दूजा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक उच्चागम पार

संत प्रसाद वैद नारायण कर्ण कर्ण प्रवेक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप तारन ग्रह पार ब्रह्म स्वामी बस दी कीनी आप रहाओ जिसके से फिर

बंधन तोर छोर बिख्याते गुर को शब्द मेरे हीरे दीन रूप अन रूप मेरो कछ ना बिचार्यो प्रेम गयो मोय हरंग पीन पेख्यो लालन पाट बीज होए अन चिता हर के पतीन तैसी ही को ग्रह सोई प्रभ नानक सूठा कर तैसी ही को तीन

प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पूरा राहो देरे सरावर जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते सो जन कबू न मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे विसूर सुख स

ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा पेटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजो कोट सूरन।

थोड़ी बड़ी हूँ वडाया पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब किछ तेरा वस तेरा कर भला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपनाया पजर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दास तुद आ गए बिन बता।

पाणी पिता माता धरत महत दूसरा दई दया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचा धर्म दूर करमी।

जय जय देखो तै तेरा मां, हर के चरण नित्यावे नामा गौंड, मोको तार ले रामा तार ले, मैं अजान जन तरबो न जानो, बाप बीठला बहा दे रहाओ, नरते सुर होए जात निमक मैं, सदगुरु बुद्ध सिखलाई, नरते उपज सुरक को जीतो, सो अवखद मैं पाई, जहां जहां तू नारद टेके, नैक निटका वो मोहे, तेरे नाम अविलंब बहुत जन उधरे, नामे की निज मत ए गौंड,

जैसे गाय का बाछा छूटला, तन चोख था माखन कुटला, नाम देव नारायण पाया, गुर पेटत अलख लखाया, जैसे बिखे हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नाम बिन बापरो नामा, रागौण बानी नाम देव जियो की कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा, हर को नाम लै उत्तम तरमा, हर हर करत जात कुल हरी, सो हर अंधले की लाकरी, हरे नमस्ते हरे नमे, हर हर करत नाही दुख जमे राओ, हर हर नाकस हरे प्राण, अजय मल की ओ बैकुंठे थान, सुआ पड़ावत गन का तरी, सो हर नैनो की पुतरी, हर हर करत पूतना तरी, बाल कातनी कपटे परी, सिमरन द्रोपद मत सिमरत द्रोपद सुत उदरी, गौतम सती शिला निस्तरी, केसी कंस मथन जिने।

कारण करण करीम कृपा धार रहीम रहाओ। कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निवाए। कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सफेद। कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू, कोई वंश पिछते कोई सरगिंदू। को नानक जिन हुकम पछाता, प्रभु साहिब का तिन भेद जाता।

कौन मुआरे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा ए तो चलत प्यारा। अगली किछ खबर न पाई रोवन हार बे ऊठ सधाए परम मोह के बांधे बंद सुपन पया पखलाए अंध। ए तो रचन रचा करतार आवत जावत हुक्म अपार न को मुआ न मरने जोग न बिनसै अबनासी होग। जो ए जानो सो ए नाहे जानन हारे को बल जाओ को नानक गुरु परम सुखाया ना कोई मरे न आवे जाया। राम कली मल्ला पंजवा जप गोपाल जप गोबिंद गोपाल लाल राम नाम सिवर तुझी मैं फिर ना खाई महाकाल रहा। कोट जन्म भ्रम भ्रम भ्रम आयो बड़े पाग साध संग पायो बिन गुर पूरे नाई उधार बाबा नानक आखै ए बिचार। राग राम कली मल्ला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार पुकारे ताना तू माने खटबी एका बात बखाने। दस अष्टी मिल एको कहया ता भी जोगी भेद न रहा किंकुरी अनुपवा जय जोगिया मतवारो रे रहा। प्रथमे मस्या सतका खेड़ा तृतीय मैं किस पया दो तेड़ा द्वितीय अर्धो अर्ध संभाया एक रहा ता एक दिखाया। एक सूत परो ए मणिया बिन गाठी पिन पिन पिन दिन कणिया फिरती माला बोबद पाए खिचया सूत ता आई थाए चो मैं एक मट किया तै बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया इं किंकुरी अनुपवा जैसुन जोगी के मन मीठी लागै रहा। दूजा राम कली मल्ला पंजवा तागा करके लाई थिगली लो नाड़ी असुआ है असती अंबे का कर डंडा तरिया क्या तू जोगी गर्भ भरिया। जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो तिहाई दिहाई रहा गहरी में भूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुद्रा धारी मांगे टूका तृप्त न आवे नाथ छोड़ चाचे लाज न आवे। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुरु गोरख की तै बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई।

लियो समझाए रहा कर कृपा राख्यो गुर सरणा गुर पकराए हर के चरणा बीस बिस्वे जा मन ठहराए गुर पार ब्रह्म की एक ही बीस बिस्वे जा मन ठहराने गुर पार ब्रह्म एक ही जाने जो जो कीनो हम तिसके दास प्रभ मेरे को सगल निवास

सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत निकाई गुरपुरा भेटत उदार रहा। जब उसको कोई जा देवे मान तब आपस ऊपर रखे गमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब वो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ढकावे तिसे ठौर एक ठौर ओ कही ना समावे। ओन मोहे बोते ब्रह्मांड राम जनी कई ती खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कस न लै। इसे त्याग सत्संग करै वड़पागी नानक को तरै। राम कली मल्ला पंजवा आत्म राम सरो मैं पेख पूर्ण पूर्या प्रभ एक रतन मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आ पहचान प्री अमृत संतन सन प्रसाद। बड़े भाग हो है तो पाइया बिन जेवा क्या जाने स्वाद रहाओ। आन दस भेद सुने कै डोरा कोट प्रगास न दिसे अंधेरा। पशु प्रीत घास रंग रचा जिस नाही बुझावे सुखित पत बुझे। जानन हार रहा प्रभु जान ओत पोत भक्तन संगान। बेगस बेगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेड़ न आवे। राम कलीम अल्लाह पंजवा दीनो नाम ओ कियो पवित। दीनो नाम कियो पवित हर तन दास नरारे बित। काटी बंदर से वाला ए हर हर भक्त राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जन अपने गुरुदेव नवाजा रहा। आय बनवे ओ पूरला भाग जन्म जन्म का सोया जाग। गई गलान साध के संग मंत्र रातो हर के रंग।

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत व्या दुर्मत बिन सहरा चे हरनाए। चरण कमल से लागी प्रीत, गुरपुरे की दिन मल रीत, पहु पागा निरपव बन बसै, अमृत नाव रसना नित जपै। कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सदा सच लाए। तोट न आवे अखुट भंडार, नानक पग सोया हरद्वार। राम कली महला पंजवा। रतन जवेहर लाम नाम, ससंतो ज्ञान सुख सहज, दया तप दया का पुतार, भक्त वाले होता। मेरे राम को पंडार, खात खर्च कछ तोट न आवे, अंत नहीं पार हर पार अवार। राव कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन कर राखी कुंजी। सुन समात गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण दह बासन। भगत संप्रभ गोष्ठ करत, तै हरख न सोग न जन्म न मरत, कर कृपा पुरुष आद दवाया, सा संग तिन हर तन पाया। दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरे वर्तन हर मेरी रास। राम कली मल्ला पंजवा, मैं मां ना जाने भेद, ब्रह्म मैं ना जाने भेद। अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म व्यंत, अपनी गत आप जाने, सुरसन अमर बखाने, राव संकरानी जाने पेव। खोज तारे देव देवियां न जाने मर्म, सब ऊपर अर्ख पार ब्रह्म। अपने रंग करता केल, आप छोरे तापे मेल, एक पक एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आव जनाए। संतन की सुन साची साखी, सो जो बोले सो देखे आखी, नहीं ले तिस्पुन न पाप, नानक पर आपे आप। राम कली महला पंजवा, किशु न काज किशु काज न की हो जान, सुरत मत नाही किस ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म, किशु न जानो कैसा कर्म। ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन और ना कोई तुझवर दूजा और ना कोई, भूले चुके प्रभ तेरे रहाओ। रे दिना बोध न सित प्रगास, बिखे ब्याद के गाम में बास, करण हार वे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवो दा मन, विश्राम पाप खंडन पर तेरो नाम, तू अगंत जी का दास, जिसे जनावे तिन तू जात। जो उपजोति आस, सगला राधे प्रभ गुणतास, नानक तेरे कुरबान, नानक दास तेरे कुरबान, बेअंत साहे मेरा मेहरबान। राम कली मल्ला पंजवा, राखण हार दयाल, कोट पवखंडे निमक ख्याल, सगला राधे जंत, मिलिया गुरबर परवंत। जीवन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी, कड़कड़ राता मेरा।

मन माय पय आनंद तरण तारण हर शरण जीवत जो पर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊचे पार सो मत सार जित हर सिमरी जय कर कृपा जिस सपन आपे दीजै सुख सहज आनंद धरनाओ नानक जपिया गुर मिलनाओ राम कली मल्ला पंजवा सगल सियान पछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए ओह सावधान अपने गुर स्यों आसा मनसा पूर्ण होवे सगल निदान गुर स्यों रहाओ दूजा नाई जाने कोय सतगुर निरंजन सोए मानुख का कर रूप न जान मिली न थामे मान मिली न माने मान गुर की हर टेक टिकाए और आसा सबलाए हर का नाम मांगन दान तंत्र का पावे मान गुर का बचन जप मंत एह भगत सार तत् सतगुर पै दयाल नानक दास निहाल राम कली मल्ला पंजवा होवे सोई पलमान अपना आता अभिमान दिन रैन सदा गुण गाओ राम कली मल्ला पंजवा आनंद कर संत हर जप छाड़ स्यान बोचत राय गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की कर आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजल उतर है पार देवन हार दतार अंत न पार आवार जाके कर सब निदान रख रहा निदान नानक पाया ए निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तस्कीकत होए नानक करम प्राप्त होए राम कली मल्ला पंजवा दुर्लभ दे सवार जाए तो दरगह हार हलत पलत होए वड़े आई अंत की बेला ले छिड़ाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए होए दोए सुहेले अचरज पुरख ते हों रहाओ उठत बैठत हर जा बिन से सगल संता बैरी सब होए मीर निर्मल होए तेरा होवे चीत सब ते उत्तम ए कर्म सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर सुमर तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरे बा पार पूर्ण तेरी होवे आस जन्म जम की कटिया तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजा नानक जप सह समीजा राम कली मल्ला पंजवा जिस की तिस की करमान अपन लाए गुमान जिसका तो तिसका सब कोय तिसे आरा सदा सुखोय काए परम परमे गम बेगाने ना बिना कुछ काम न आवे मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाओ

गुण गाए बन मेरे राव, तुम्हें कारण करण चरण कमल हर शरण, मन तन हर ओइ त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निधान, रख रहान निधान, सर्व किरेन हो विजय, आप मिटाए मिलीजय, अनदिन त्याया नाम, सफल नानक के काम, राम कली मल्ला पंजवा। कारण करण करीम सर्व प्रतपाल रहीम, अल्लाह अलख अपार, खुद खुदाए बड़ बेम सुमार, ओ नमो भगवंत गुसाई, खालक राव रहया सुठाई राव, जगन्नाथ जग जीवन माधो भव पंजन माए राधो, रखी के सेव गोपाल गोविंद पूर्ण, सर्वत्र मुकंद मेहरवान मौला, तू ही एक पीक पिका मरदे सेख, दिला का मालक करे हाक, कुरान क्रेव ते पाक, नारायण नार हर दयाल, रमत राम कड़ कटिया धार, बास देव वस्त सब ना ठाए, लीला किस के लकी न जाए, मेर दया कर करने हार, भक्त बंदगी देव सिमरन सृजनहार, कहो नानक गुरु खोए परम, एको अल्लाह पार ब्रह्म, राम कली मल्ला पंजवा। कोट जनों के बिन से पाप, हर हर जपत नहीं संताप, गुर के चरण कमल मन बसे, महाविकार तंते सब नसे, गोपाल को गस गाओ पराणी, कथ कथा साची प्रपूर्ण, ज्योति जो समाणी रहाओ, तृष्णा भूख सब नासी, संत प्रसाद जपया अविनाशी, रेण देन प्राप्त से कुमानी, हर मिलने की ए निशानी, मिठे जाल होए प्रभ दयाल, गुर का दर्शन देखने हाल, परापुरुबला कर्म बनया आया, हर के गुणित रसन साया, हर के संत सदा प्रवान, संत जना भगत मस्तक निशान, दास किरेन पाए जे कोई, नानक तिसकी परम गत होए, राम कली मल्ला परमान, दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय तर त्यान, तूर संतन की मजन मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर मतज मल जाए, जिस भेटत मिटे अभिमान, पार ब्रह्म सब नदरी आवे, कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ, गुर की कीर्त जपिया हर नाओ, गुर की भक्त जदा गुण गाओ, गुर का सुरत निरकर जान, गुर का सुरत गुर की सुरत निरकर जान, गुर का सुध सतकरमान, गुर बचनी संसर सुख दुख, कद न व्यापै तसना भूख, मन संतोख शब्द गुर रापे, जप गोविंद पढ़दे सब काजे, गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुरदाता दयाल बख्शिंद, गुर चरणी जा कवन नु लागा, नानक दास तिस पूर्ण पागा, राम कली मल्ला पंजवा। किस प्रवास बिचरे भवन, मूढ़ मुगत तेरा संगी कवन, राम संगीत सगत नहीं जाने, पंच बटवारे से मीत न कर माने, सो कर सेव जित उतरे मीत, गुण गोविंद रविया दिन राती, सा शंकर मन की प्रीत रहाओ, जन्म देहा बयाने अहंकार बर्बाद, तृप्त न आवे बिख्या साध, भरमत भरमत मानक पाया, तरी न जाई दुतर माया, कामना क्रोध न सो आकार कमाने, आप बीज आपी खाने, राजन को दुख राखन को दूसर नी कोए, तो निस्त्रह जो कृपा होए, पतत पुनीत सब प्रभ तेरो नाम, अपने दास को की जयदान।